ॐ श्री साई साधु मानस परिशोधकाय नमः। ॐ श्री साई साधकानुग्रह वटवृक्ष प्रतिष्ठापकाय नमः। ॐ श्री साई सकल संशय हरा